0: जब अकार एकच न दिष्टे
1: तापन तब कहते होता
0: जब तारे आपन सुन समात
1: तब बैर ब्रो के संकमात
0: जब इसका वर्ण चेन न जापत
1: तब हर सो को किसे व्यापत
0: जब आपन आप पार ब्रह्म
1: तब मो कहा किस होवत परम
0: आपन खेल आप वर्ती जा
1: नान करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बंद मुक्त को किसको गनी
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नरक सुर को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए
1: तब शिव संत को किस ठाए
0: जब आपे आप अपनी ज्योत तर
1: तब कवन निडर कवन कत डर
0: आप चलत आप कर ले हार
1: नानक ठाकर अगम अपार
0: अविनाशी सुख अपन आसन
1: तय जन्म मरण का कहो विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब अभिगत भगवोचर प्रभ एका
1: तब चित्र गुप्त
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: कौन छुटे कौन बंधन बांधे
0: आपन आप ही अचरज
1: नानक अपन रूप आप ही परजा
0: जय निर्मल पुरख पत होता
1: तैबन मैर कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कौन को मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: छल चित्र लगत को कीस
0: जय जो स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: किसे भूकम तंतावे
0: करण करावन करन हार
1: नानक करते का नाही समार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माई बा मित्र सत पाई
0: जय सर्व कला आपे पर बीन
1: वेद का वेद कहाँ को चीन
0: जब अपन आप उतार
1: तो सगन सन का विचारे
0: जय अपन ऊच अपन आप नेरा
1: कौन ठाकर कौन कहिए चेरा
0: विस्मन विषम रहे विस्माद
1: नानक अपनी गत जान लो आप
0: जय अचल अछेद भेद समाया
1: वहाँ किसे व्याप्त माया
0: आपस को आपे आदेश
1: तय गुण का नाही प्रवेश
0: जय एक एक एक भगवंता
1: कौन अचिंत किस जागे चिंता
0: जय अपन आप पतियारा
1: तय कौन कथे कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊचते ऊचा
1: नानक आपस को आपे पहुँचा
0: जय आप रचियो पर पंच अकार
1: तय गुण में किनो विस्तार
0: पाप उन तय पई कहावत
1: ओ नरको स्वर्ग विषावत
0: हाल जाल माया जंजा
1: हमें मोह परम पार
0: दुख सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार की अभिज्ञान
0: अपन खेल आप कर देख
1: खेल सोचे तो नानक एक
0: जय अभिक्त भगत तय आप
1: जय पसरे प्रसाद संत प्रताप
0: दू पाका पैतनी
1: उनकी शोभा उनो बनी
0: आपे कौत करे अनक चोज
1: आपे रस भोजन निर्जोग
0: जिस पावे तिस आपन नाय लावे
1: जिस पावे तिस खेल करावे।

0: संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगर समग्री एक स्कट माहे
1: अनेक रंग नाना दर्शाई
0: नौ नित अमृत प्रभ का नाम
1: देहि मैं इसका विश्राम
0: सुन संवाद अनत नाद
1: कान न जाई अचरज विस्माद
0: तिन देखिया जिस आप दिखाए
1: नानक तिस जन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बार अनंत
1: घट घट ब्याद रहा भगवंत
0: धरन माहे आकाश पया
1: सर्व लोक पूरन प्रतिपाल
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पाँव पानी बसंतर माहे
1: चार कुंड तै दिसे समाए
0: तिस्ते पेन नहीं कोठाओ
1: और प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमृत मैं देख
1: ससिय सूर नखत मैं एक
0: वाणी प्रभ की सबको बोले
1: आप डोल न कबू डोले
0: सर्व कला कर खेल खेल
1: मोहि न व्यापे गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
1: तार रहो स्वामी ओतप्रोत
0: गुर प्रसाद भरम का नास
1: नानक तिन में एक विश्वास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सो बचन
1: सर्व व्यापे राम संरचन
0: जिर जाता तिस की ये रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख मान
1: करण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बार भी ओही
1: नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत
1: जिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: दिस पावे ता करे विस्तार
1: जिस पावे ता एक ओंकार
0: अनेक कला लखी न जाए
1: जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कौन निवक निकट कमल कही है दूर
1: आपे आप परपूर
0: अंतर कत जिस आप जनाए
1: नानक तिस जन जाए
0: सर्व भूत आप वर्तारा सगल समग्री जा का तना
2: अपन जस आप ही सुना
0: आवन जान खेल बनाया
1: आज्ञाकारी कीनी माया
0: सबके मद अलिप्तो रहे
1: जो कुछ करना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
2: नानक जा पावे ता लय समाए
0: इसते होए सो नाही बुरा
2: बुरे कहो किने कुछ करा
0: आप भला कर तो अत नीकी
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साज धारी सब साज
1: ओत प्रोत अपन संगराज
0: ताकि गतमित कहीं ना जाए
1: दूसर होए ता सो जी पाए
0: किसका सी कि दिस किसका किया सब फरमान
1: गुर प्रसाद नानक के जान
0: जो जाने तिसरा सुख होए
1: आप मिलाए लय प्रभु सोए
0: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
0: तन तन तन जन आया
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया
0: जन आवन का एह सुआओ
1: जन के संग चितावे नाओ
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार
1: नानक

पाया कर मिला नहीं ठाकुर हैया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखण जीवा बिसरा मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साची नाम की लागे भूख उत भूख खाए चलिया है दुख।

सोत्रया गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पहु करया।

प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सत्या वह तुझी हर सच्चे सिर जन हारा सब जीत माड़े जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घड़ घड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा

बेनती चाह पाई हमरी करो आस दरछा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सभ्य तुम काबहो आप हद मोह बचाबहो सुखी बसाई मोरो परवारा सेवक सिख सभ्य करतारा मोर अच्छा निज कर दाई करिया सबैरण कौ आसन करिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरण त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हर दे मुझा अबरिया है मरण काल का त्राव सुन भरिया ओ जो सदा हमारी पछाव श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा राख ले हो मोह रखन हाड़ी साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंताव तुमहो पुरी चतुर दस कंताव काल पाए ब्रह्मा भवतराव काल पाए शिव जु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जूथी ओ जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आपस वाली सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को बल मोह बत कियो कड़कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे असूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है कड़कड़ की पड़पड़ की जाना है जब उद कर करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब या कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जीते पद नौ श्रेष्ठ सब धार है आप अपनी बूझ उचारै

पायो जिसका सब साध हारो। जे को खावे जे को पुंचा तिसका हुए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित राख और तारो। तम संसार चरण लख तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो।

कीर्तन दी इतनी हाजरी प्रवान करना जी पुल चुक दी खिमा आओ शरण करिए गुरु इतिहास की कथा ज्ञानी दर्शन सिंह जी और पासों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

राग गौड़ी पूर्बी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलहो हरलाहा गै बसन सोहेला औद कट दिन सरायणा रे मन गुरमिल काज सुवारे रहाओ एहो संसार बेकार संसे मह त्रयो ब्रह्म ज्ञानी जैसा जगाए पिया वै हो रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई ब्याज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाव हो सुख सह

मनमानी नमो रोग रोगी नमस्तु स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट नमो तंत्र तंत्रम सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्तले वासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा ब्रत करता अद उर दर्दंग अगंग ओ घरता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अछेदीय भेदीय नामं कामं समस्त उपराधि समस्त स्थम तेरा जोर चात्री छंदे जले हैं थले हैं पीते पे हैं प्रभु है जुगह दिशा पिशा उपजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंद स्वरूपे नव श्रीमाने समस्त निधाने नमस्तवंग निर्नाते नमस्तवंग परमाते नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साह साजे नमो साह साहे नमो माह माह नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतारंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृशंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपड़ छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल योगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल त्रमंग अलक्रम सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग युक्ता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पारु सर्व मान त्रिमान देव भेव आद उदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन कालु जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप लसालु नाम ठाम न जाप जाकर रूप रंग न वेख आद पुरख आधार मूर्ता जौन आदा सेख देश और न पेस जाकर रूप रेखना राग जतर तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनराग नाम काम बिहीन पेखत तामु न जाए सरमान सर्वत्र मन सदै मन ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीर्ण रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जानही जेह वेद और कतेब रूप रंग न जात बासो जो जानही के

के राजेंद्र प्रभाय के त्रभंग तो जाए के अशोक वर्ण के सर्वा पर्ण के जगदंग कृतिय के छत्रंग छत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुप अनुप के आद अदेव के अप अपेव के चतरंग विहीन के एकाधीन के रोजी रजा कर हिमार हक के पाक बया बैं के गैबल गैबें के अफल गुनाह के साहन साह के कारण कुणिंद के रोजी देहांत है के राज कर हिम के कर्म क्रीम है के सरभंग कली है के सरभंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौन के सर्वत्र पौन के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंताओ के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिशय के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पानय के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वंग कलिम के परमंग अफीमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के उसनल वजु है तमाम रजु है हमेशा सलामय सलीखत मदामय ज्ञानी मूल सकस्त है गरीब प्रस्त है बिलांदल मकान है जिमिन जमान है तम जो तमाम है रुजल नदान है हरिपुर जी मै रजाक जकीना अनेक तरंग है भेद है भंग है जीजल नवाज है गरीबल कराज है निरुक्त स्वरूप है तिरमुक्त विभूत है परभुगत प्रभ है सुजुगत सुदह सदैव रूप है भेदी अनुप है समस्त उपराज सदा सर्व साज है समस्त सलाम है सदैव काम निर्बाध स्वरूप है अंगाध हनुप है ओ अंग आद रूप है नास रूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्ग त्रिबाधे अगन जे अगाधे सुभंग सुरभागे सुसर्भ अनरागे त्रिभुगत स्वरूप है छे जे हजूत है कि नरक प्रणास है प्रतिल प्रवास है निरुक्त प्रभ है सदैवंग सदा है विभुक्त स्वरूप है परयुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभ है अनुक्त स्वरूप है परयुक्त अनुप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अपेख है लिख है पर मैं कर मैं नाथ जुगा दया जय है मैं है भूत्या तूत्या नासया दासया धंद है बंद है भगत है ब्रक्त है नास है प्रकाश है नचन त्या सुनन त्या लिख्या देख्या लेखा भेखा ढाहै गाहै असंभ है अगम है नील है नाद है नित है सुनित है जात है जद है इन चरपट छंद त प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता शावल छंद त्वा प्रसाद नमो नरक नासी सदावं प्रकाशी अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाथि सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकुं सरीक अमितो अमीक सदैवं प्रभ अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशा सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दमागे के हुसन चरागे के कामल करीम है के राज कर ही मैं के रोजी देहंद है के राज कर हिंद है करीमल कमाल है के हुसन जमाल है गरीमल खराज है गरीबल नवाज है हरि फल से कान है हरासल फिकान है कलंक प्रणासे समस्त निवासे अगंजल गनी मै रजाय कर रही मैं समस्त जबाहे के साहिब किराहे की नरक प्रणासे बहतुल निवास है के सर बुल गवान है हमें सुर रवान है तम अमृत अजीब है समस्त अजीज है परम परम ईस है समस्त अधीस है अधीस अलेख है हमें सुल पिख है
ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮਿਗਲ ਅਮਾ ਹੈ ਕਰੀ ਮੁਲਕ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈ।

गंज हर नर पर पांजे। अन गन प्रणाम मुन मुन सलाम हर नर अखंड बर नर मंड अन पहो नास मोन मन प्रकाश गुण गन प्रणाम जल थल मदाम। अनछ जयंगासन पांडु उपमा पार गात मित दारू जल तल मंडो दिस विस पंड जल थल महंत दिस विस व्यंतन पहु नास त्रिता त्रा साजन बाहे कस दा होम काराद कथनी नाद खलखन ख्यालो गुर बरकाल। कर कर प्रणाम चित चरणाम चित गात जजना बात गण चंद गात रंज बात गण टोट भंडार ठट अपार।

कि एक मार्ग जाना गुर प्रसाद दीजनी आप तजिया हर वासना समाणी कह नान चाल भक्ता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाहे तिव चला स्वामी हो क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाहे तिव चला है जिन मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम।

ज नाम बिख जंजाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अतित पावन भगत वच्छल करुणा निदान कोट ब्रह्मंडा दे मालक गुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र निगी अगोश विच सुभाए मान जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ सतगुरां दी अपार रहमत बख्शिश सदका वडभागी गुरसिख संगतां अमृत वेले तो गुरु दरबार अंदर सज रहे सुंदर दीवाना विच पहुंच के सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन दीदारे अमृतमई बाणी श्री आसा जी की वार होर शब्दां दा रस पिन्ना शब्द कीर्तन सत्कार योग रागी जत्थे दी मुबारक रसना तो सरवण करके मिले हुए मोलक मनुख जन्म दे सवासां कड़ियां समें नूं सफल बना रहे सतगुरु रहमत करन गरीब निवाज पामन लड़ीवार कथा उपदेश धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज बख्शिश कीते हुए चार चार पौड़ियां वाले चौपदे शब्द दूजे घर सुरताल दे विच बाईवां शब्द अज प्रारंभ हो रहा। सतगुरु महाराज जी बैरागमई उपदेश दे रहे ने जो कुछ भी मनुख इकट्ठा करदा

कहो को है काका। भगत कबीर साहब जी, सो दिन आमन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो को है काका। उस वेले कोई भी किसी की सहायता नहीं करता। रामकली राग दे विच महाराज जी यही सुचेत कर रहे, तेरा रामकली महला पंजवा, तेरा काज न गृहो राज माल। ऐ देख जीव मनुख, तेरे काम आउण वाले नी गृहो वड्डे वड्डे महल घर राज माल, सारी सहूलत होनी, राजियां वाला माल धन होना, वड्डा घर होना, महल होना, राज माल राजियां वांग अमीर वजीर होके रहना, सब कुछ घर विच होना, किसी चीज की कोई कमी ना हो, सारियां सहूलतां ने राज माल, माल धन वाधू है। तेरा काज ना गृहो राज माल, असल विच वास्तव विच इन्हां दा शरीर नाल संबंध है, ते शरीर लिमिट समय विच मिलिया है, स्वास गिणती दे मिले,